0: समय में कहा गया है कि एंथ्रोपिक की हरकत मौसीकी के उन पब्लिशरों और गीत निगारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करती हैं। एंथ्रोपिक ने पब्लिशरों के दावों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो अदालत में भरपूर तरीके से अपना दिफा करेगी।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। नेपाल और चीन की सरहद के करीब सैलाबी रेले के मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस आफत को आए एक हफ्ता गुजर चुका है और बारिशों के फ्रंट के साथ साथ कम दबाव के निज़ाम की वजह से शुमाली जापान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

0: मज़ेदार यानी ओइशी से पहले इच्चीबान लगाकर इच्चीबान ओइशी बनाया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर के मुतालिक सवाल करने के लिए दोरेगा इच्चीबान पूछा जाएगा। इसमें दोरे के मायने हैं कौन सा,
1: यानी खाने पीने की कुछ चीज़ें सामने हों और उनमें से सबसे मज़ेदार चीज़ कौन सी है पूछना हो तो दोरेगा इच्चीबान ओइशी दिसका पूछेंगे, ठीक है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक।
1: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
2: ओइशी देस, इच्चीबान ओइशी देस, दोरेगा इच्चीबान ओइशी देस का।
1: जी सामीन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब सबसे बेहतर के इंतखाब से मुतालिक एक मकालमा सुनिए। एक गाहक जापानी मिठाइयों की दुकान में है और बेहतरीन मिठाई का इंतखाब करना चाहता है।
3: दोरेगा इच्चीबान निंकी गा अरिमासु का?
4: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: दोरेगा इच्चीबान निंकी गा अरिमासु का?
1: कौन सी सबसे मकबूल है?
0: निंकी गा अरिमासु यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और आरिमस फेल आरु यानी होना की मस शक्ल है।
4: कोरे गा ओसुसुमे देसु,
1: मेरी तजवीज़ ये है।
0: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज़ या सिफारिश।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
2: निंकी गा आरिमस, इच्चीबान निंकी गा आरिमस, दोरे गा इच्चीबान निंकी गा आरिमस का।
0: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फ़र्ज करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
2: यासुई, यासुई।
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: दोरेगा इच्चीबान यासुई देसु का? दोरेगा इच्चीबान यासुई देसु का?
0: अब फ़र्ज करें कि आप किसी रेस्तरां में हैं जहाँ बहुत सी अकसाम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज़ की अलग अलग कीमत नहीं मालूम, चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
2: ओतोकुना, ओतोकुना।
0: ये ना इसमें सिफत है। जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो तो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय देस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे सबसे बाकिफायत कौन सा है?
4: दोरेगा इच्चीबान ओतोकु देसु का? दोरेगा इच्चीबान ओतोकु देसु का?
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के जुमला मकालमे में वेटर ने इस्तेमाल किया है
5: गोचुमोन वा।
0: गोचुमोन वा के मायने हैं आप क्या लेंगे। रेस्तरां या कैफे में वेटर ग्राहक से ऑर्डर लेने के लिए यह जुमला इस्तेमाल करते हैं। चूमोन का मतलब है ऑर्डर। इससे कबल का गो गाहक को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। यानी गोचुमोन वा का लफ्जी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़े है, इसलिए हज़फ कर दिया गया है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
6: गोचुमोन वा,
7: गोचुमोन वा,
8: गोचुमोन वा।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खसूसी ध्यान दें जिसमें कायतो मुख्तलिफ चीज़ों में से इंतखाब पूछता है।
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: और अब खाने के शौकीन कायतो के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू रामेन है।
0: रामेन नूडल्स डिश है। गुंदे हुए आटे की बारीक पट्टियों या नूडल्स को गर्म पानी में उबालकर प्याले में सूप के साथ पेश किया जाता है। इसमें ऊपर से उबले हुए अंडे, गोश्त के पार्चे या सब्जियों जैसी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है। तहम जापान में मुनफरद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
1: वैसे रामेन कई अकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
0: जी हाँ, रामेन का सूप